0: And it is he who begins creation, then he repeats it, and that is even easier for him. To him belongs the highest attribute in the heavens and earth, and he is the exalted in might, the wise.
1: माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सफल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी.
8: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
9: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं.
7: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला.
9: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा.
7: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू.
9: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी.

0: बढ़िया सर्विस से मालामाल ट्रेवल
1: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
2: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
2: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
4: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल .com।

0: Breakfast with Deep Roger. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound in your pocket this morning can get you 128.76 Indian rupees, 379.76 Pakistani rupees, 438.04 Sri Lankan rupees and 1.36 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LEICA Radio.
1: And the gold rate is currently starting at 111.29.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
0: Leica Radio.
1: Okay, leading the next songs up to the news, and after that, I'll speak to you all at the next point. Don't forget, we've got the all-important question in cinema as well.
0: Breakfast with Deep Raja.
3: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीज तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th 9th 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक विजिट करें साई फैशंस चीतम हिल या कॉल करें 0161 20 22 455 साई फैशंस इसी स्टाइल के
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल
8: यू मीन सॉफ्टहॉल ट्रेवल
7: यस देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर
8: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टहॉल ट्रेवल
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए
9: कॉल सॉफ्टहॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250 दैट्स 0161 250 1250
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
12: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
14: नीड अ कार द हलाल वे लुक नो फर्दर हलाल कार फाइनेंस इज नाउ अवेलेबल इन द यूके विद अयान नो इंटरेस्ट नो हिडन फीस नो कॉम्प्रोमाइज अप्लाई today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
15: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
16: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊँगा.
17: नाम परशुराम. अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
15: अरे कहाँ हो तुम?
16: हो हो, आलो आलो.
17: परिवार उसके लिए चारों धाम. बाहर वो है परशुराम.
18: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392.
0: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester and Leica Gold Radio. Deep Roger, waking you up every weekend. Leica.

0: Deep Raja, waking you up every weekend. Laika.
1: Ye hai.
2: Laika Radio.
0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
4: यू मीन सबटल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल.
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
5: कॉल सबटल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
0: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर. खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीज तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ. पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक. विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 0161 20 22 455. साई फैशंस, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें.
9: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का. सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार.
10: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
11: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
10: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
0: Deep Raja, making you feel good every weekend breakfast. Breakfast with Deep Raja. Laika Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

ये थी मुकेश जी और वाणी जयराम की आवाजें। फिल्म का नाम छलिया, आर डी बर्मन का म्यूजिक और उससे पहले आन मिलो सजना फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया किशोर दा की आवाज में, जो कि आई थिंक राजेश खन्ना और आशा परिक की फिल्म थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। और लीजिए इन दोनों गीतों के साथ एक बार फिर से संडे के दिन ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए आप सबके क्या हाल चाल है, कैसे है? मैं तो कल यहाँ आपके साथ नहीं थी और वीकडेज में भी रवि जी के शो में साथ नहीं थी, लेकिन ऐसे मुझे लग रहा है जैसे कि मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। और आपका भी यही कहना है कि ऋतु कहाँ चली गई थी सिर्फ एक दिन आपसे नहीं मिली तो लग रहा था बापरे कितने सारे दिनों बाद आ रही हूँ। लेकिन कल अश्विनी आपके साथ नहीं, सो थैंक यू अश्विनी फॉर कवरिंग मी। और आपके मैसेजेस ढेरों मुझ तक पहुंचे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि बहुत अच्छा समय बिता कर आई हूँ, अच्छी हॉलीडेज मना कर आई हूँ एक हफ्ते की। और यू नो हॉलीडेज के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाता है, तो आज बिल्कुल मैं ऐसे ही मूड में हूँ, खुश खुश।

0: और अच्छे मूड में, और चाहूंगी कि आप भी ऐसे ही मूड में रहें और हमारा साथ दें। और जो भी साथी मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। गीतों का ये सिलसिला 1 बजे तक यूं ही चलता रहेगा, और हाँ, आपसे बातें भी होती रहेंगी, बस आप हमारा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिल जाएंगे 128.25 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio. Mm-hmm.

0: coat, microwave, food containers.
1: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 0161-2022-455 साई फैशंस इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल
8: यू मीन सबटल ट्रेवल
7: यस देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर
8: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए
9: कॉल सबटल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250 दैट्स 0161-250-1250
10: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
11: अच्छा कान्हा क्यों जा रहे हो
12: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
10: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
12: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
10: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू
12: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
13: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan. Drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store from stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
15: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better
16: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
17: We are Leica Radio.
18: Leica Radio.
17: Listen to us in Greater Manchester and Greater London. Don't forget, in London, we're available on 1458 AM and DAB. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com.
18: This is Leica Radio.
17: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
18: This is Leica Radio.
17: Greater Manchester.
18: Leica Radio.

0: लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में हम आपके हैं कौन फिल्म से था ये गाना। राम लक्ष्मण का म्यूजिक और राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने। लेकिन आपको बता दें कि राजश्री प्रोडक्शंस के जो संस्थापक जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस को बनाया जिनका नाम ताराचंद बड़जात्या आज ही के दिन जन्मे थे 10th May 1914 में राजस्थान के एक छोटी सी जगह कुचामन सिटी में इनका जन्म हुआ था। और आप सभी इनके बारे में जानते हैं, इनका नाम सुना है, इनका पोता सूरज बड़जात्या जो कि फिल्मों में कमाल दिखा रहे, अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बहुत सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, इसके अलावा हमेशा ही राजश्री प्रोडक्शन से बहुत ही अच्छी फिल्में बनी हैं। आपने देखी होगी दोस्ती, उपहार, नदिया के पार, सारांश, ये सारी फिल्में राजश्री प्रोडक्शंस की ही फिल्में हैं। और अक्सर ही आपने देखा होगा कि फिल्मों में हमेशा भारतीय मूल्यों को, भारतीय परंपराओं को और पारिवारिक संबंधों को प्रमुखता दी जाती थी। और ताराचंद बड़जात्या का उद्देश्य यही था कि फिल्मों में कभी भी अश्लीलता उन्होंने नहीं दिखाई, कभी भी लड़ाई धड़ाई मार काज नहीं दिखाया, एक पारिवारिक फिल्म बनाई जिसे सारा परिवार एक साथ बैठकर देख सके। और संगीत तो हमेशा मधुर होता ही था, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नए कलाकारों को भी मौका दिया और उन कलाकारों की लिस्ट बहुत लंबी है। और इसीलिए आज हमने ताराचंद बड़जात्या जी का जिक्र किया क्योंकि आज ही के दिन वो जन्मे थे। और अगर वो राजश्री प्रोडक्शंस की स्थापना नहीं करते तो बताइए जरा हमें इतनी अच्छी खूबसूरत फिल्में कहां से देखने को मिलती। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है या कहूँ आज उनका जन्म दिवस है।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
0: तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि यह है लाइका रेडियो नेटवर्क जहां पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इन शोज में ऋतु शर्मा है आपके साथ 10 से 1 हमेशा ही सैटरडे संडे आपका साथ निभाती हूँ। आप सभी का स्वागत है। ढेरों ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं एंड थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए। और हमारे विजय जी आज भी आपने बहुत ही अच्छा सा शुभ विचार हमारे साथ शेयर किया है। कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते फिर भी ये लोगों को काट सकते हैं और बीच में दीवार खड़ी किए बिना भी लोगों को बांट सकते हैं। बिल्कुल सही कहा और आजकल के जमाने में तो ये बातें जैसे बिल्कुल सही बैठती हैं। रोशनी स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। महेंद्र बजारिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे राजेश जी हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि रविवार की शुभकामनाएं, आशा है कि आपकी छुट्टी का सप्ताह अच्छा गया होगा। बिल्कुल और बहुत ही बढ़िया गया, मजा आया। यू नो ये छुट्टियां होनी चाहिए, हॉलिडे पर जाना चाहिए, सब काम काज को एक तरफ रखकर एक अच्छा सा समय बिता के रखिए और मुझे लगता है ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप जिंदगी की सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ, टेंशन भूल जाते हैं जब वहाँ हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते नए नए चेहरों को देखते हैं। तो हॉलीडे जरूरी होती है। तो मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। एंड योगेंद्र जैन जी आपने क्या कविता हमारे साथ शेयर की है। कहते हैं देखो मौसम बदल गया ऋतु, यार मौसम सच में बदल गया। लास्ट वीक कितना अच्छा मौसम था और आज देखो कितनी ठंड है। और आपने उसी पर एक कविता लिखकर हमें भेजी है। लिखते हैं हुआ अपहरण धूप का पूरी जनता मौन, हुआ अपहरण धूप का पूरी जनता मौन, कोहरा थानेदार है रपट लिखाए कौन। ऐ सर्दी इतना ना इतरा, ऐ सर्दी इतना ना इतरा, अगर हिम्मत है तो जून में आ। क्या बात है, आई लव दिस कविता। थैंक यू आपने हमारा साथ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी, मृदु जी, सलमा जी कैंट में सुन रही है, फारूक जी आपका कहना है कि मैं आपका शो बहुत सुनता हूँ और शुरू के दो गाने सुनकर ही मैं बता सकता हूँ कि रेडियो पर आप हो या नहीं, बिना आपकी आवाज सुने। क्या बात है, मतलब मेरे गीतों से अगर मेरी पहचान हो रही है तो ये क्या कहूँ, इतना प्यार, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश रुदा जी, हरीश खत्री जी, थैंक यू। मांशु पटेल, अर्जुन जी, उल्लाव जी, नरेंद्र पाठक जी, भारत गंगाराम, निवेदनी, थैंक यू, पटनी में सुन रही है, कहती है मैं हमेशा आपको सुनती हूँ, थैंक यू निवेदनी। गुरुदेव गंजा हमारे साथ है, कहते हैं गुरुदेव का नमस्कार, तो ऋतु का भी आपको नमस्कार, थैंक यू। हर्ष जी लेस्टर में आप सुन रहे हैं, संध्या भावसर, मिस्टर शेख, अमिता जी, तोची जी, ज्योति जी, सहर, महेंद्र पटेल, अनिल सोनी जी वियाना में, और जितने भी साथी घर में, गाड़ी में, बाहर काम पर, गार्डन में, जहाँ भी है, सभी का स्वागत, हम सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है ये गाना, जिसमें रफी साहब और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम बम्बई का बाबू, और जिसमें बम्बई के बाबू बने थे देवानंद, साज में थी सुचित्रा सेन। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये फिल्म राज खोसला पहले देवानंद और मधुबाला के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से मधुबाला को और फिल्मों की तरह ये फिल्म भी छोड़नी पड़ी और बाद में इस फिल्म का हिस्सा बनी सुचित्रा सेन।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
0: तो इस तरह के और भी ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स मैं आपको सुनवाती हूँ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में, और सेकंड आवर में होता है जोड़ी नंबर वन, और आज की जोड़ी कौन सी है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सुरेखा जी, थैंक यू, आप प्रोग्राम सुन रही हैं। मिसेस चियांग, स्वागत है आपका, शो को एंजॉय कर रही है। ऑफ कोर्स हमारी आंटी जी कहती है सही कहा, ऋतु बहुत ठंड है। सच में मैं तो सच ही कहती हूँ, बहुत ठंड है, बाहर अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर जाना, लग नहीं रहा कि ये मई का महीना है। सत्यनारायण सैनी जी, स्वागत है आपका, रोशनी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिनेश पोपट जी, आप सभी का स्वागत है।
2: ये है लाइका रेडियो, फील गुड ट्रैक्स ऑल वीकेंड विद रितु शर्मा ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर मैनचेस्टर एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज रितु शर्मा।
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
4: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
10: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीएस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
9: जेमीन्स फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
12: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB Digital Radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Leica Radio Manchester or download the Leica Radio mobile app.
13: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
14: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
2: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall, with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: जतिन ललित के म्यूजिक पर लता जी और कुमार शानू की आवाजों में था ये गाना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से हम सभी का ऑल टाइम फेवरेट गाना। और आपको बता दें कि ऐसे ही एक नहीं दो नहीं ढेर सारे गाने आप लाइव सुन सकते हैं शानूदा की आवाज में, क्योंकि लंदन में वो आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए और उनका शो है मंडे 25th में जो कि बैंक हॉलीडे मंडे है। और अगर अभी तक आपने टिकट्स बुक नहीं कराई हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि शानूदा के यहाँ बहुत सारे फैंस हैं। और इससे पहले कि टिकट्स या सीट्स फुल हो जाएं, फटाफट टिकट मास्टर यूके पर जाकर अपना टिकट बुक कीजिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज वन पाउंड आपको देगा 1.3 US dollars, 128 भारतीय रुपए, 379 पाकिस्तानी रुपए एंड 86.78 अफगान अफगानी।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 111.29 pounds per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio, Greater Manchester, on 963 AM and 1377 AM.
3: Yeah.
4: Leica Radio.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आपको बता दें कि आईपीएल के जो मैचेस चल रहे हैं उसमें आज दो मैच हैं। पहला मैच चेन्नई में होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, और ये मैच अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे से शुरू होने वाला है। और मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमारा साथ देते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
0: और लीजिए अगला गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार होगी आपसे मेरी फिर से मुलाकात। प्रकाश सुधा जी नॉल्स फ्रॉम नॉर्थ होल्ट में, मीनाक्षी जी, रमेश जी वॉकिंग कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारी अरुणा जी। चलिए अगला गीत आप सभी के लिए,
1: ये है लाइका रेडियो। द वेट इज नाउ ओवर। द किंग ऑफ मेलोडी कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट।
5: तुझे देखा तो ये जान।
1: वन नाइट ओनली, बैंक हॉलिडे मंडे द 25th ऑफ मे एट द आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल
6: विद फुल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बाय आरजी एकेडमी ऑफ म्यूजिक,
1: प्रेजेंटेड बाय पेपेस एंड पावर्ड बाय बेरिको फूड डिस्ट्रीब्यूशन
6: विद टीवी पार्टनर जी टीवी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर स्प्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप एंड रागासन।
1: टिकट्स अवेलेबल नाउ एट वेन्यू बॉक्स ऑफिस और टिकट मास्टर। ब्रॉट टू यू बाय रॉक ऑन म्यूजिक, यूके इवेंट्स लाइफ, ट्यूटर्स वैली एजुकेशन, एम्प्रियो Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर, खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक, अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विजिट करें साई फैशंस चेतम हिल या कॉल करें 01612022455। साई फैशंस, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें।
9: Thank you.
4: Need urgent fund? Want to sell your house in cash? Having a financial difficulties buying a house? UK International Group of Companies can help you buy or sell your house in cash. We arrange bridging loans on easy interest rates. With over 35 years of experience, UKIGC offer a complete solution for property and finance. Call Riaz Ahmed on 07885-401-694. That's 07885-401-694.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Power your business's growth by advertising here on Leica Radio Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales@leicaradio.com.
13: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: Get in touch. Advertise on Leica Radio Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales@leicaradio.com. This is Leica Radio, Greater Manchester. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Radio Greater Manchester.

क्या खूबसूरत गाना है जिसे लता जी ने आवाज दी है। फिल्म का नाम रजिया सुल्तान, जो 1983 में आई थी, और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था खयाम ने और कैफी आजमी ने। और कैफी आजमी ने इस गीत को भी लिखा था, और इसलिए आज कैफी आजमी की बात कर रही हूँ क्योंकि आज कैफी आजमी की पुण्यतिथि है। आज एक दिन 10 मई 2002 में जब वो 83 ईयर्स के थे इस दुनिया को छोड़कर गए थे। लेकिन आपको बता दें कि कैफी हाजमी, जिनका असल नाम था अतहर हुसैन रिजवी, यूपी के आजमगढ़ में जनवरी 1919 में पैदा हुए थे, और जानने वाले उनको कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही शायरी का बहुत शौक था, और इसीलिए उन्होंने अपनी पहली गजल मात्र 11 साल की उम्र में लिख दी थी। हालांकि उनके पिता उन्हें मौलवी बनाना चाहते थे, लेकिन कैफी आजमी को लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने हमारी कई सारी सुपरहिट फिल्मों में बहुत सुपरहिट गाने लिखे हैं। आपको याद होगा पाकीज़ा, हीर रांझा, हकीकत, अर्थ, कोहरा, ये सारी फिल्में हैं जिनके गीत संगीत बहुत ही सुंदर हैं। और एक और गाना जिसे रफी साहब ने गाया है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले।

0: वतन साथियों, ये गाना भी कैफी आजमी की कलम से ही निकला है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, इसे भी कैफी आजमी ने ही लिखा है। और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, इस तरह के कमाल के गीत लिखे हुए हैं कैफी आजमी ने, और इसीलिए उनके इस कमाल के काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। उसके अलावा उन्हें बहुत सारे और भी अवार्ड मिले हैं, और कहते हैं कि कहते क्या हम सब जानते हैं कि उनकी फैमिली के सभी लोग बहुत पॉपुलर रहे हैं, सभी में गुण कूट कूट कर भरे हैं। शौकत आजमी उनकी पत्नी रही है, जो एक बहुत ही सुंदर थिएटर आर्टिस्ट थी, मुगले आजम में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। शबाना आजमी को आप जानते ही हैं, उनके पति जावेद अख्तर, शबाना आजमी के पति जावेद अख्तर भी एक मशहूर गीतकार हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फैमिली है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा योगदान दिया है। कैफी आजमी, आज उनकी पुण्यतिथि, इसलिए आज हमने उन्हें याद किया और उनकी फिल्म का उनका लिखा हुआ ये गाना सुनवाया। कोशिश करूंगी कि एक आध गीत और भी बजा सकूं, लेकिन फिलहाल तो शुरू होता है जोड़ी नंबर वन का सिलसिला, अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि वन पाउंड आज आपको देगा 128.25 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app, or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.

0: रखे नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
3: यू मीन सॉफ्टहॉल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टहॉल ट्रेवल।
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
8: कॉल सॉफ्टहॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner like our Radio.
10: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर। खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीज तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 0161-2022-455। साई फैशंस, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें।
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all, and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in 3 different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom, and garlic flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
14: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
15: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
14: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
16: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल, मिलिए अनुपमा से।
17: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
18: Presented by South Hall Travel, powered by Data T Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
19: Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LaikaRadio.com or the Laika Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
20: This is Laika Radio.
19: Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 AM and DAB in London and on the Laika Radio mobile app.
20: This is Laika Radio.
19: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Laika Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
20: This is Laika Radio.
19: Greater Manchester.
20: Laika Radio.

0: यस आज की हमारी जोड़ी नंबर वन का पहला गाना 1980 की फिल्म बंदिश से लिया था। और आज की हमारी जोड़ी नंबर वन है राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की जोड़ी, जिन्होंने जानते हैं कितनी फिल्मों में साथ में काम किया है। 15 फिल्मों में दोनों साथ में नजर आए हैं और कुछ फिल्में हिट हुई हैं और कुछ नहीं भी चली हैं, लेकिन गाने एक से बढ़कर एक है।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Leica Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Leica Radio.
0: वैसे ये जोड़ी काफी खूबसूरत जोड़ी मानी जाती रही है, क्योंकि राजेश खन्ना काफी हैंडसम थे अपने जमाने के सुपरस्टार, और हेमा मालिनी का तो उस समय जो क्रेज था आम जनता में तो था ही, उस जमाने के हीरो में भी हेमा मालिनी का बहुत क्रेज था, और इसीलिए इस जोड़ी को कई बार पर्दे पर उतारा गया। ये जो गीत आपने सुना बंदिश का, ये फिल्म मैंने देखी है। इस फिल्म में हेमा मालिनी का रोल छोटा सा है और उनकी डेथ हो जाती है, और मुझे याद है कोई इंजेक्शन लगाते हैं उसमें डैनी, शायद ड्रग्स का या कुछ ऐसा, मतलब ये फिल्म मुझे याद है, मैंने देखी हुई है। और मैं उस समय दुखी भी हुई थी कि ये हेमा मालिनी इतनी जल्दी क्यों इस फिल्म में मर गई। एनीवेज, ये थी पहली हमारी जोड़ी नंबर वन का पहला गाना, और हमारी प्रज्ञा बहुत खुश है क्योंकि ये उनकी फेवरेट जोड़ी है। और गीतों को सुनकर आपके ढेरों मैसेजेस आए। शेखर अरान जी, थैंक यू, कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, आपने क्रूज पर गई थी और अच्छा टाइम बिताया, जानकर हमें अच्छा लग रहा है। जी हाँ, थैंक यू, मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया। गुरुदेव गंजा, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, थैंक यू। रोशनी प्रतिभा जी, थैंक यू। सलमा जी, अमिता जी, जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले, ये गाना चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। इसके अलावा हैरो से दिव्या जी, सपना एंड परेश व्या, संध्या भावसर एंड ज्योति गिरीश शाह हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। आप सभी के मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, गीतों को पसंद करें, बस मुझे और क्या चाहिए, आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आपको गीत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ये गाना कुदरत फिल्म से था जो 1981 में आई थी, जिसमें आर जी बर्मन का म्यूजिक था, और ये थी हमारी आज की जोड़ी नंबर वन।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
0: तो आप सबको गीत पसंद आए, लेकिन फरीदा जी कहती हैं कि ऋतु मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है और मुझे महबूबा के गाने बहुत पसंद हैं, और आपने जो गाना सुनना शायद चाह रही थी वो गाना अभी दो दिन पहले ही किसी शो में बजा है, तो इसलिए मैंने उस गाने को अवॉइड कर दिया। और हमारे विजय जी भी एक गाना मुझे याद दिला रहे हैं जो उनका फेवरेट गाना है। एक्चुअली वो गाना मैं बजाना चाह रही थी, पर वो गाना भी अभी हाल फिलहाल ही बजा है, तो मैंने सोचा कि कुछ और सुनाया जाए ताकि आप बार बार वही गाने ना सुन सकें, कुछ नया सुन सकें। किसी और दिन उन गीतों को जरूर बजाऊंगी, लेकिन आप भी अच्छी नॉलेज रखते हैं आप सब भी, और मुझे कुछ और गानों के सजेशन मिले आप सुनना चाहते हैं, तो बस जो गाने आप कह रहे हैं ना वो मेरी भी नजर में थे, मेरे भी दिमाग में थे, लेकिन अगर वो गाना बजा है हाल फिलहाल में तो इसलिए हम सोचते हैं कुछ और गीत सुनवा जाए। बट फिर कहूंगी आने वाले टाइम में आपके पसंद के गीत जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको जोड़ी नंबर वन तो खत्म हो गया है 80s से पीछे लेकर जाने वाली हूँ, यानी कि 50s की ओर चले।
1: This is Ritu Sharma. Like a radio. Like a radio. Finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: कमाल का ओपी नैयर का म्यूजिक और उस पर आशा जी और शमशाद बेगम की आवाजें और ऐसे ही कुछ गाने सुनवाऊंगी ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स में प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले अमर जी को धन्यवाद कह दें जो अपना हमारा साथ दे रहे हैं, जिन्होंने मैसेज भिजवाया है, थैंक यू। और ये है शिवराज कदेसा भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू महेंद्र बाजारिया जी। शमशाद बेगम का ये गीत अवार्ड विनिंग गाना नया दौर फिल्म से आपने पसंद किया है, थैंक यू। और इसके अलावा ये मैसेज मुझे भेजा है परेश व्यास जी आपने, थैंक यू साथ देने के लिए। मिसेस चियांग कहती हैं कि ये गाना मेरे नाम कर दीजिए, आई थिंक आप तूने और रंगीले वाला गीत बात कर रही थी, चलिए हमने आपको नाम किया। रानी जी इस्लाम में हमारे साथ है, नरेंद्र पंचाल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू। प्रतिभा जी, रोशनी जी और जितने भी साथी साथ जुड़े हैं एंड ऑफ कोर्स हमारी संध्या भावसर एंड शेखर आनंद जी, तो सभी का धन्यवाद। गीतों को आप पसंद कर रहे हैं तो मुझे मजा आ रहा है, चलिए सुनाते हैं आपको एक और गाना। 70s की फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत गीत है, यश चोपड़ा की फिल्म से लिया है, बजाती हूँ।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इस बार का टॉपिक है वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, यानी कि हमारी देसी शादियों में क्या क्या होता है और उसके बारे में बहुत सारी बातें आपको सुनने को और जानने को मिलेंगी। तो जरूर लाइका एक्स्ट्रा यानी कि पॉडकास्ट, लाइका पॉडकास्ट आप सुनिए और ये अवेलेबल है सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर, स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, अमेज़न पर सुन सकते हैं, जहां मर्जी जाकर सुनिए।
1: Mica Extra is here. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Need urgent fund? Want to sell your house in cash? Having a financial difficulties buying a house? UK International Group of Companies can help you buy or sell your house in cash. We arrange bridging loans on easy interest rates. With over 35 years of experience, UKIGC offer a complete solution for property and finance. Call Riaz Ahmed on 07885-401-694. That's 07885-401-694.
4: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
7: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Choose buybullion24.co.uk today.
8: Sade Dasve Guru Govind Singh Ji Maharaj da Pavitr Janam Sthan Takhat Shri Harminder Ji Patna Sahib de live darshan dekho. सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
9: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Punjab, the biggest tunes.

0: ताली तक जुम्मी तक ताली तक जुम्मी तक धलाम को तक जुगे तक ताली के नदी तक नाक तक जुम्मी तक नाक नाक जुम्मी तक नाक नाक जुम्मी तक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दागु तारी के डे ताली जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दागु तारी के डे जम तारी जग तारी जग नाक नाक ता जिन्द ता जिन्द ता जिन्द ता जम तारी जग तारी जाने जाने को ता जिन्द ता जम ता जिन्द ता ताक दंग दंग दंग कड़े दंग दंग ताक दंग दंग दंग
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता क्यों जा रंगी चाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

गाने को सुनकर तो मुझे स्विट्जरलैंड की वादियां याद आ गई हैं, जहां पर इस गाने को शूट किया गया था। चांदनी फिल्म का गीत ऋषि कपूर और श्रीदेवी पर पिक्चराइज, जिसमें म्यूजिक था शिव हरी का। काश्यप जी को ये गाना बहुत पसंद है। शुमिला मंगर और संध्या भावसर कहती हैं, ये तो मेरा वेडिंग सॉन्ग है। चलिए आपको हमने डेडिकेट किया। और उससे पहले सिलसिला फिल्म का गीत यश चोपड़ा की फिल्म और म्यूजिक बाय शिव हरी, यानी कि दोनों ही फिल्में यश चोपड़ा की और दोनों में ही म्यूजिक शिव हरी का। शिव हरी दोनों ऐसे जाने माने नाम है जिन्होंने भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। और जानते हैं ये शिव हरी कौन है? आप इसे बहुत सारे साथी जानते होंगे। शिव हरी में से जो शिव हैं, वो है शिव कुमार शर्मा, जाने माने संतूर वादक, जिन्होंने एक कश्मीरी वाद्य संतूर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और भारत में देश विदेश में बहुत नाम रोशन किया। और हरी जो है वो है पंडित हरी प्रसाद चौरसिया, जो कि एक जाने माने बांसुरी वादक रहे हैं, जिन्होंने भी बांसुरी के क्षेत्र में भारत को बहुत पहचान दिलाई है और देश का नाम रोशन किया है विदेशों में।

0: और इन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ पंडित शिव कुमार शर्मा को भी 1986 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2001 में पद्म विभूषण से। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी दिया गया है। ये जो शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी है, कमाल की जोड़ी है। जब दो गुणी लोग मिलेंगे तो काम तो अच्छा निकल कर आएगा। और इसीलिए देखिए यश चोपड़ा की बहुत सारी फिल्में हैं जिनका म्यूजिक यादगार है, चाहे सिलसिला हो, चांदनी हो, लम्हे हो, डर हो, और भी अनेकों मूवी जिसमें शिव हरि का म्यूजिक रहा है। और आपको बता दें कि इस जोड़ी के, शिव हरि की जोड़ी के शिव कुमार शर्मा आज इस दुनिया को छोड़कर गए थे। आज उनकी भी पुण्यतिथि है, 84 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी। लेकिन काम उनका बहुत बोला और आज भी बोलता है। कहते हैं बहुत ही सिंपल इंसान थे, बहुत ही सादगी से जीवन जीते थे। और इनका बेटा राहुल शर्मा भी संतूर वादक है और अपनी पिता की जो विरासत है उनको आगे लेकर जा रहे हैं। वो भी संतूर बजाने में माहिर है। तो आज हमने शिव हरि के म्यूजिक से सजे हुए दो गाने आपको सुनाए और शिव कुमार शर्मा जी को याद किया जिन्होंने बहुत खूबसूरत गाने बॉलीवुड में बनाए हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की, क्योंकि है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर जिसमें हम गेम खेलते हैं। तो बता दें आपको कि आज के तीन वर्ड्स कौन से हैं। चलिए फिर जो पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दें कि बॉलीवुड के किसी एक गाने से मैं तीन वर्ड्स लेती हूँ, शुरू की जो तीन चार लाइनें होती हैं उनसे तीन वर्ड्स पिक कर लेती हूँ और आपको उनकी मदद से गाना पहचानना होता है। और आप सब ये काम हर बार कर लेते हैं तो देखते हैं आज कर पाते हैं या नहीं। तो आज का जो गाना है वो नहीं बताऊंगी, गाने के तीन वर्ड्स बताऊंगी। पहला है सामने, दूसरा वर्ड है मुलाकात और तीसरा वर्ड है बात। किशोर दा की आवाज है, 1971 में आई थी ये फिल्म और आरडी बर्मन का म्यूजिक है। बहुत प्यारा गाना है। पहला वर्ड है सामने, दूसरा वर्ड है मुलाकात और तीसरा वर्ड है बात। कौन सा है ये गाना? अगर आपको पता है तो इस नंबर पर अपना मैसेज भिजवाना।
1: WhatsApp Like a Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तब तक हम आपको याद दिला दें कि आज £1 के बदले में आपको मिल सकते हैं 128.25 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive.
2: Yeh hai Laika Radio.

0: Satco Microwave Food Containers.
1: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सफल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: कॉल सफल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
5: इसी मिस न करें साई फैशन की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा. अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर, खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीज तक. अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ. पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक. विजिट करें साई फैशन चितम हिल या कॉल करें 0161-2022-455. साई फैशन, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें.
6: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
7: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
6: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स.
7: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
8: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
9: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
10: This is Leica Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB Digital Radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Leica Radio Manchester. Or download the Leica Radio mobile app and listen to the entire Leica Radio network wherever you are in the world. This is Leica Radio.
11: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the time. Check my phone. Why do I need to take my...
12: Hey, boy!
13: Coast Guard, we're stuck.
14: Okay, help's on its way.
13: Hold on, mate.
15: Shoes tied. Phone.
16: Back before dark, love. Okay.
17: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
18: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HeartyHanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HeartyHanks.com today.
10: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favorite presenters live. Get the tune-in details at LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आशा भोसले की आवाज में समाधी फिल्म से था ये गाना, जो पिक्चराइज किया गया था धर्मेंद्र और आशा पारेख पर, और आशा पारेख है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: Leica Radio.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.
0: चलिए अब शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाते हैं आपको पहला गाना।

0: जी हाँ, ओपी नैयर के म्यूजिक पर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फागुन फिल्म से था ये गाना। और काशिफ जी, ये गाना आपको अच्छा लगा, हमने चलिए आपको डेडिकेट किया। और मेरा थ्री वर्स गेम भी चल रहा है, बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिए हैं, लेकिन जिन्होंने जवाब दिया है सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, ये वाला गाना नहीं है। तो आप थोड़ा और सोचिए कि गाना कौन सा है। लेकिन बहुत सारे साथियों ने सही जवाब भी दिया, और जिन्होंने गाने को सही पहचाना है उनके नाम है नरेन पटेल जी, दिनेश पोपट जी, भरत गंगाराम जी, करसन पिडोरिया जी, उल्लास जी, विजय कुडूरी जी, दिव्या हैरो से, जयश्री जी, रानी सोहानी, शुमिला मंगर, सहर, नीलेश तन्ना, रेनू वशिष्ठ, जैनुद्दीन, कुकी तोची हाजरा, आप सबने गीत को सही पहचाना है। तो बजाऊंगी वो गाना, लेकिन पहले दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवा दूं।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
1: This is Ritu Sharma.
2: Laika Radio.
0: और अभी हमारे महेंद्र बजारिया जी ने भी गाने को सही सही पहचान लिया है। महेंद्र जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए सुनवाते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, और इस बार आवाज है गीता दत्त की।
3: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा।

0: लीजिए गीता दत्त की आवाज में था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, और इसे आप सभी को डेडिकेट करते हैं, खास तौर पर संध्या भावसर जी के पिताजी को, जिनकी की आज बर्थडे है और वो भारत में है। उनका नाम है जयंती भाई, और संध्या भावसर के साथ सभी परिवार वाले उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां भेज रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी ओर से भी आपको ढेरों बधाइयां, और बस थोड़ी देर में सुनवाऊंगी आज के 3 words गेम वाला गाना, लेकिन उससे पहले एक गाना और सुनवाती हूँ।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive.
2: ये है
1: Leica Radio.
2: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर, खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीज तक, अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 0161-2022-455। साई फैशंस, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
9: बचाओ काना, क्यों जा रहे हो?
10: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
8: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
10: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
8: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
10: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
11: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लीजिए, इतना सुंदर गाना हमारी बहुत प्यारी लिस्नर है शर्फून, उन्होंने मुझे डेडिकेट किया है, लेकिन मैं ये गाना मेरी ओर से आप सबको डेडिकेट करती हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग और हमारे बहुत सारे साथियों का ये फेवरेट गाना है। भीगी पल के फिल्म से लिया था ये गीत जो 1982 में आई थी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और कुछ और आंसर्स मुझे मिले हैं अर्जुन जी, स्वाति बेस वोटर से, अनुषा खोड़ा जी, आपने भी गीत को सही पहचान लिया है, तो देर किस बात की है। सुनवाते हैं आपको आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना।
2: This is Laika Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 379 पाकिस्तानी रुपए एंड 167 बांग्लादेशी टकास।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LAIKA Radio.
2: Formerly known as Asian Sound Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LAIKA Radio.
0: So gold rate is 111.29 pounds per gram.
2: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
3: LAIKA Radio. Yeah.
2: LAIKA Radio. LAIKA Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: खबर। आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, आर्य बर्मन का म्यूजिक, किशोर दा की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन। ये है लाइका रेडियो
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज ये लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच चल रहा है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक खेलते हुए 18.6 ओवर्स में 194 रन जोड़े हैं और उनके 6 विकेट्स गिर चुके हैं।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: और बस आज का मेरा और आपका साथ यहीं तक। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। मेरे बाद गोल्ड पर होंगे अनुराग, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी फजीला एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी अनिका। नेक्स्ट वीक होगी आपसे मेरी फिर से मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
2: लाइका रेडियो वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
6: Location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Need urgent fund? Want to sell your house in cash? Having a financial difficulties buying a house? UK International Group of Companies can help you buy or sell your house in cash. We arrange bridging loans on easy interest rates. With over 35 years of experience, UKIGC offer a complete solution for property and finance. Call Riaz Ahmed on 07885-401-694. That's 07885-401-694.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
10: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Bradford Mellor, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio. New hits on Leica Radio.

0: लिखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Advertise today on Leica Radio Greater Manchester. Call 0161 250 8222. Next, Rubina Khan with Sunday Magazine on Leica Radio Greater Manchester. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: Celebrate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Lycra Radio.
1: Okie dokie, the gold rate this afternoon is £111.29.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Like a radio. Ye hai Like a Radio.
2: Need urgent fund? Want to sell your house in cash? Having a financial difficulties buying a house? UK International Group of Companies can help you buy or sell your house in cash. We arrange bridging loans on easy interest rates. With over 35 years of experience, UKIGC offer a complete solution for property and finance. Call Riaz Ahmed on 07885 401694. That's 07885 401694.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
4: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
5: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल.
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
6: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
7: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा. अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर, खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक. अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ. पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक. विजिट करें साई फैशंस चीतम हिल या कॉल करें 0161 20 22 455. साई फैशंस, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें.
8: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ.
9: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
10: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
9: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in-store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Lycra Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Lycra Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at lycraradio.com and the Lycra Radio mobile app. A Lycra Radio classic plays now.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: This is Leica Radio.
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: इसे मिस न करें साई फैशन की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th 9th 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक विजिट करें साई फैशन चितम हिल या कॉल करें 0161 2022 455 साई फैशन इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल
8: यू मीन सफ्टल ट्रेवल
7: यस देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर
8: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टल ट्रेवल
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए
9: कॉल सफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250 दैट्स 0161 250 1250
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fryam shape mein hai wo bachpan ki yaad.
13: Snack time hunger ko banaye aur be tasty with Jaymin's Fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri aur shizwan with best quality and same ethnic taste.
14: Jaymin Fryams. Available at your nearest ethnic grocery stores.
15: ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
16: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ईमेल सेल्स एट laikamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161 250 8222 दैट इज 0161 250 8222 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन
1: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: नून संडे की आफ्टरनून आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आपके साथ है आज के प्रोग्राम के साथ। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं आप खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जी और शांत से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए इन गीतों के साथ साथ जो चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। मेरा और आपका साथ है टिल 7 o'clock और इस दौरान मेरी कोशिश रहेगी अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन करती रहूं। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, लता जी की आवाज में। आवाज किसने मिलाई थी? कुमार सानू जी ने। और दूसरे गीत में आपने आवाज सुनी लता जी एंड अमित कुमार की फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी। ये थी 1981 की फिल्म। सो आगे बढ़ते हैं और जिन मेरे साथियों ने ऑलरेडी अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाने शुरू कर दिए उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहीं रहिए मेरे साथ, जहां भी बैठे सुन रहे हैं, किस एरिया में है बताना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होती है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी SBI UK वालों के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है। You can go to the branch, you can go online और अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है Yono SBI UK का मोबाइल ऐप तो उसके जरिए घर बैठे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और आज भी बहुत अच्छा रेट है। 128 rupees and 25 paisas आपको मिल सकते हैं। डिपेंड्स के कितना बड़ा अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं, जितना बड़ा अमाउंट होगा उतने ही ज्यादा रुपए आपको मिलेंगे। तो जल्दी कीजिएगा, एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल रहे हैं इतने पैसे, 128 rupees and 25 paisa।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: इसे मिस न करें साई फैशन की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर। खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विजिट करें साई फैशन चीतम हिल या कॉल करें 0161 20 22 455। साई फैशन इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
0: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते। रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
5: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
6: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिंग फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
5: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिंग्स पोटैटो चिप्स।
6: जयमिंग फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
7: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
8: Atif Aslam.

0: मोहब्बत से देखा, वाह वाह वाह, व्हाट अ सॉन्ग। आपने सुना ये गीत फ्रॉम द फिल्म भीगी रात, 1965 में आई थी ये फिल्म और इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने। ऐसे गीत सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं सुनने को मिलते हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए हमारी मुलाकात होती है सैटरडे एंड संडे और आपकी प्रेजेंटर सरिता कोशिश करती है कि ऐसे गीत आपके साथ मैं शेयर करूं जिनके साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हों। अगर इस गीत के साथ कोई याद जुड़ी थी तो मुझे आप लिखकर भेज सकते हैं। और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है फ्रॉम द फिल्म तीसरी मंजिल। कौन सा, जरा सोचिए।
1: फील गुड ट्रैक वाज ब्रॉट टू यू बाय laikaradio.com। वी आर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन वाया द लाइका रेडियो ऐप एंड वेबसाइट ऑन laikaradio.com। लिसन लाइव और लिसन बैक।
2: दिस इज लाइका रेडियो।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Coca Noodles वालों की जानिब से ये गाना आप सब तक पहुंचा और आपको पसंद आया गाना और मेरे बहुत से साथियों ने बिल्कुल ठीक पहचाना था कि तीसरी मंजिल का यही गीत हो सकता है क्योंकि आज के सभी गीतों में अब तक एक वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है और वो वर्ड क्या आपने पहचान लिया यस देखा आपको कौन सा वर्ड या कौन सा गाना याद आ रहा है इस वर्ड पर अगर बताना चाहते हैं तो नंबर आपका जाना पहचाना है मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं तो अब अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है फ्रॉम द फिल्म छोटी सी मुलाकात कौन सा गाना हो सकता है सोचिए सोचिए व्हाइल आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग
2: WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: Tujhe dekha, tujhe chaha, tujhe pooja maine. बस इतनी खता है मेरी और खता क्या

0: भाई आप तो बहुत होशियार हैं, हर गीत के बाद मुझे बता देते हैं यही गाना हो सकता है और हर गीत के बजने से पहले बता देते हैं जब मैं फिल्म का नाम बताती हूँ तो यही गाना प्रोग्राम में शामिल होने वाला है। यस, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, छोटी सी मुलाकात का टाइटल ट्रैक था तुझे देखा तुझे चाहा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ऐसे गाने कहाँ बनते हैं। आपको याद है कब देखी थी ये फिल्म और किसने काम किया था इस फिल्म में? उत्तम कुमार थे, विजयंती माला थी, राजेंद्र नाथ थे, शशिकला थी इस फिल्म में, तरुण बोस थे एंड शंकर जयकिशन का संगीत था और गीत बहुत खूबसूरत, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पसंद किया।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive.
2: ये है
1: Leica Radio.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सबटल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
4: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सबटल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to ट्रेड। विजिट heraldpackaging.com।
7: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
8: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
9: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
7: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
9: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
7: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
9: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
10: Pace Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programmes and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. We would love to hear from you to make Leica Radio, Greater Manchester a better station for you. Leica Radio, Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@leicaradio.com.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
1: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Gold Radio. This is Leica Radio Greater Manchester. This is the Leica Radio Network. You heard? The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
7: WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20.

0: अक्सर मेरे प्रोग्राम में सैड गाने थोड़े कम होते हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे गीत रोमांटिक गाने हो जिनके साथ आपके दिल में थोड़ी सी गुदगुदी हो जाए, थोड़ा सा प्यार उमड़ आए और आपको पसंद भी आए, आप उन गीतों को याद भी करें और गुनगुनाएं. लेकिन मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मुझे भी पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपने ज़रूर पसंद किया होगा. फिल्म का नाम था उपासना, 1971 में आई थी ये फिल्म.
1: Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: चलिए आपको बता दें कि एक पाउंड के बदले आज आपको क्या मिल सकता है किस करेंसी में. सो सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपीज आपको मिल सकते हैं एक पाउंड के बदले 128.71, पाकिस्तानी रुपीज 378.97, बांग्लादेशी टका 167.38, अफगानी 87.10 एंड US dollars 1.36.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: और अब गोल्ड रेट पर भी एक नजर डाल दें. गोल्ड रेट है आज 111 pounds and 29 pence पर ग्राम.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.

0: and the Radio Academy Arias 2026. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: आइए एक नजर आज के मौसम पर डालते हैं एक बार फिर से. लंदन और आसपास के इलाकों में धूप निकली हुई है, नाइस डे है एंड हाई इज 16 डिग्री सेल्सियस. मिडलैंड में 18 डिग्री लेकिन थोड़ा क्लाउडी है और मैनचेस्टर में 14 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर. इट विल गो डाउन टू 5, सनी इंटरवल्स एंड जेंटल ब्रीज. अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो.
0: फॉर स्पेशल राइट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, यूएसए, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. Like a radio. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: Welcome to the second hour of the show. और इस आवर में भी सबसे पहले सुनेंगे हम back to back दो गाने और उसके बाद बहुत सी और भी बातें होंगी. मेरा साथ इसी तरह से देते रहिएगा.
0: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 9:63 a.m. and 13:77 a.m. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Sarita Sabharwal.

0: बैक टू बैक दो गाने सुने और दोनों गीत मेरे दिल के करीब थे। मुझे उम्मीद है कि मेरी पसंद आपकी पसंद बनी होगी। प्रकाश झा साहब ने बनाई थी फिल्म मृत्युदंड इन 1997। सो आज के प्रोग्राम के इस आवर का आगाज उसी गीत के साथ मैंने किया। इस फिल्म की हीरोइन थी माधुरी दीक्षित, शबाना आजमी थी, अयूब खान थे एंड मोहन आक्षी ने इस फिल्म में काम किया था। ओम पुरी जी भी थे। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था आनंद मिलन ने और ये गीत खास तौर पर मुझे बहुत पसंद है जो आपने अभी अभी सुना। और आज रपट जाएं, ये भी गाना बड़ा खूबसूरत है। किशोरदा एंड लता जी ने गाया इस गीत को। लता जी थी, आशा भोसले की आवाज थी, यस आशा भोसले एंड किशोरदा की आवाजें थी और गाना बहुत खूबसूरत। स्मिता पाटिल एंड एबी यानी अमिताभ बच्चन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। फिल्म का नाम था नमक हलाल। सो प्रोग्राम के सेकेंड आवर में हम हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बड़े प्यार से प्रोग्राम में मेरा साथ देते रहिए क्योंकि अच्छे अच्छे गीत आपकी सेवा में मैं प्ले करने वाली हूँ ऑल द वे टिल 7 o'clock। इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर कोई और खुशी का मौका है तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बहुत आसान काम है। इंडिया में कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने हो तो यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम द ब्रांच जा सकते हैं ऑनलाइन या फिर योनो SBI UK का जो ऐप है मोबाइल का उसके जरिए भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 1 British sterling pound के बदले आज आपको मिल रहे हैं 128 rupees and 25 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
2: We at Wyomere is no longer in debt.

0: बहुत ही प्यारा गीत आपने सुना नैनो वाली ने, बहुत अच्छा गीत था और ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी। सुनील दत्त एंड साधना ने इस फिल्म में काम किया था, फिल्म का नाम था मेरा साया। 1966 में आई थी ये फिल्म और ये गीत आप तक पहुंचाया किसने, डेरी वैली वालों ने।
1: फील गुड ट्रैक वाज ब्रॉट टू यू बाय LaikaRadio.com। वी आर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन वाया द LaikaRadio ऐप एंड वेबसाइट ऑन LaikaRadio.com। लिसन लाइव और लिसन बैक।
2: दिस इज LaikaRadio।
1: LaikaRadio। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: सो किस किस को ये गाना बहुत पसंद आया, मुझे मालूम है आप सभी को, क्योंकि आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल गए हैं कि सरिता वाह व्हाट अ सॉन्ग, थैंक यू एवर सो मच। और कभी कभी के सारे गाने हम बहुत प्ले करते हैं लेकिन इस गीत को जगह नहीं मिलती है। मेरे प्रोग्राम में भी एक अरसे के बाद आपने इस गीत को सुना, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। लता जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत मुझे भी पसंद है और स्पेशली सभी लड़कियों को पसंद आया होगा और उन्हें अपनी शादी का वक्त तो जरूर याद आ गया होगा, क्यों ऐसा ही है ना। और ये गीत आप तक किसने पहुंचाया?
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. L-Y-C-A. This is Leica. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: कितना खूबसूरत गीत इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। फिल्म की हीरोइन थी रंजीता, बहुत ज्यादा फिल्मों में नहीं आई लेकिन जितनी भी फिल्मों में आई अच्छी लगी और इस फिल्म में इनके काम को काफी सराहा गया था। लैला मजनू था फिल्म का नाम, फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर। आपको गाना कैसे लगा जरूर बताइएगा। और अब जरा अगली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दें।
1: Extra podcast update.

0: भी आपको लाइका एक्स्ट्रा के नए एपिसोड के बारे में बता देते हैं. पॉडकास्ट एपिसोड 15 इज ऑल रेडी फॉर यू, होस्टेड बाय डोनी ब्रास्को एंड द टाइटल इज वेडिंग्स एंड बियॉन्ड्स. एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्होंने छेड़े हैं, लाइक आर इंटीमेट वेडिंग्स आर न्यू लग्जरी, डू बिग वेडिंग्स लूज देयर इमोशनल टच. काजल विल बी देयर एज वेल, सो जरूर देखिएगा प्रोग्राम. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co. Is Leica Radio.
2: इसे मिस न करें साई फैशन की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर. खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ. पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक. विजिट करें साई फैशन चितम हिल या कॉल करें 0161 20 22 455. साई फैशन इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
4: यू मीन सॉफ्टहॉल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टहॉल ट्रेवल.
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
5: कॉल सॉफ्टहॉल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
10: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to Ras Malai and Moti Chur Laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
11: Atif Aslam, live in the UK.
10: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
11: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: the Radio Academy Arias 2026. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: चलिए आज एक बार फिर से आपको मौसम का हाल बता देती हूँ. लंदन में हाई है 16 डिग्री, धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है. मिडलैंड्स में 18 डिग्री है, क्लाउडी है थोड़ा सा. और मैनचेस्टर में बहुत अच्छा दिन है, सनी इंटरवल्स, जेंटल ब्रीज. एंड मैनचेस्टर में इस वक्त टेम्परेचर 14 डिग्री एंड इट विल गो डाउन टू 5. पर अपने दिल के मौसम को हमेशा ठीक ठाक रखिएगा.
0: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड द फाइनल आवर. और उम्मीद करती हूँ अब तक का मेरा साथ आपने पसंद किया, मेरे चुने गीत आपको पसंद आए और आप इंजॉय कर रहे हैं. वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट हमारे साथ साथ रहिएगा, हम आपका मनोरंजन इसी तरह से करते रहेंगे. आइए सबसे पहले सुनते हैं बैक टू बैक.
2: लाइक योर रेडियो,
0: let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 963 AM and 1377 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Sarita Sabharwal.

0: प्रोग्राम का लास्ट आवर और इस आवर में आपका स्वागत करती है सरिता सबरवाल। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दो गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल किए बैक टू बैक, वादों से नहीं यादों से नहीं, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में गाया हुआ गीत, फिल्म जीत का था। 1996 में आई थी ये फिल्म, और बता दूं कि ये गाना फिल्म में नहीं था पर कितना पॉपुलर है ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। और दूसरा गीत मैंने चुना था किशोरदा एंड लता जी की, आशा भोंसले जी की आवाजों में, और ये गाना तोहफा तोहफा तोहफा ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था, 1984 की फिल्म थी। ऐसे गीत ऑल द वे आप सुन पाएंगे टिल 7 o'clock। 7 बजे की खबरों के बाद सैंडी शाह की जगह आ रहे हैं आज भी अभिषेक, उनका साथ देंगे आप। पर अब हम बढ़ते हैं आगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: बैंक के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बहुत आसान है। You can use the branch. ब्रांच में जाइए, वहां जाके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर योनो SBI UK का मोबाइल ऐप अगर आपके पास है तो घर बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 128 rupees and 25 paisas against 1 British sterling pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर, खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक, अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 0161 20 22 455। साई फैशंस, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें।
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
4: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
10: अरे समझो, हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी।
11: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
12: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
11: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May. And

0: इस हफ्ते हमारी आर्टिस्ट रही आशा पारिक जी। आशा पारिक जी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया है और उनकी बहुत सी यादगार फिल्में हैं। बहारों के सपने नासिर हुसैन साहब ने बनाई थी ये फिल्म। आशा पारिक के साथ थे राजेश खन्ना, प्रेमनाथ भी थे, मदनपुरी भी थे इस फिल्म में। और इस फिल्म का ये गीत मुझे उम्मीद है आपने जरूर पसंद भी किया होगा। फिल्म का संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने। याद आई कुछ बातें इस फिल्म के बारे में, कैसी लगी थी आपको ये फिल्म? उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे और ये सभी हीरोइंस एस्टेब्लिश थी, फिर भी राजेश खन्ना ने अपना नाम बनाया था इन्हीं फिल्मों से। सो आपकी कौन सी याद जुड़ी है इस गीत के साथ तो जरूर बता दें।
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना, ना।
2: फिल्म जुगनू से चुना था मैंने इस गीत को, लता जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना आपने, गिर गया झुमका हाय हाय, बहुत प्यारा गीत था और बड़ा फेमस भी हुआ था ये गाना। आपको बता दूं कि ये पिक्चराइज किस पर हुआ था, आपको याद है? नहीं याद, मैं बताती हूँ। ये गाना पिक्चराइज हुआ था हेमा मालिनी को, जो इस फिल्म की हीरोइन थी, और हीरो थे धर्मेंद्र जी। बहुत प्यारा संगीत था सचिन देव बर्मन जी का। और ये फिल्म आज के दिन रिलीज नहीं हुई थी, बट 30th अगस्त 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिस फिल्म के हीरो थे धर्म पाजी। प्रमोद चक्रवर्ती ने बनाई थी ये फिल्म। होप यू लव द सॉन्ग।
3: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
4: Boyka Radio.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: Ek nazar ek baar phir se on currency rate, aur currency rate batati hu ki 1 pound ke badle British sterling pound ke badle aapko mil sakte hain Indian rupees 128.75, पाकिस्तानी रुपीज 379.28, बांग्लादेशी टका 167.34 एंड अफगानी 87.6, यूएस डॉलर्स आपको मिलेंगे 1.36.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
2: और फाइनली इस आवर में भी बता देती हूँ कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है इस वक्त मार्केट में, 111 pounds and 29 pence पर ग्राम।
3: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
4: LIKA Radio.
3: LIKA Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि मेरा साथ आपको पसंद आया, मेरे चुने हुए गीत, मेरी बातचीत ने आपका मन लुभाया। और बता दूं कि अगली मुलाकात मेरी कल ही होगी, जी हाँ, नेक्स्ट वीक एंड वीक आफ्टर मैं बालीजी के शो को प्रेजेंट करूंगी। तो बालीजी की छुट्टियों पर हैं तो मुझे ये काम सौंपा गया, तो कल भी मेरा साथ दीजिएगा। मेरे बाद आ रहे हैं अभिषेक, उनका साथ जरूर दीजिए। विंटेज गोल्ड में आपके लिए अच्छे अच्छे गीत लेकर आ रहे हैं। बाय फॉर नाउ, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
1: ये है लाइका रेडियो। वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन
3: इन रियल state, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: इसे मिस न करें Sai Fashions की ज्वेलरी सेल extravaganza, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर, खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीज तक, अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विजिट करें Sai Fashions चितम हिल या कॉल करें 01612022455। Sai Fashions, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें।
5: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
7: Want magic in every bite? Grab Hero Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hero Foods, king in quality, king in taste.
8: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
9: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
10: अगर हम साथ हैं
9: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
11: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
12: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड YAP TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नाथको फूड्स।
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
14: LenFi means quicker and safe way to send money.
15: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
14: LenFi means £10 starting
10: sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
13: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LEMFI. Download the LEMFI mobile app today.
6: LEMFI is registered by the FCA. T's and C's apply.
1: Ye hai LIKA Radio.
15: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: with Mike Tropp on Leica Radio. Leica Radio.
1: अंकुर नाम तो सुना ही होगा और लेकर आया है दिल, तो ये मानेगा नहीं। जानम, आप देखो या ना देखो, वैसे आप मुझे देख तो नहीं पाओगे, रेडियो पे सुन पाओगे, महसूस कर पाओगे, एंड मेरी बातें वो सीधा दिल तक पहुंचेगी, दिल तक लगेगी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैसेजेस और आना शुरू हुए हैं एंड अब रियलाइज हो रहा है कि मैं हूं। क्या बात है, कमाल करते हो, जल्दी से आ जाओ और मैसेजेस आने दो ऑन 07703403020। यस, दैट्स माय नंबर एंड टाइम फॉर सम पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर। पर्सनली लव दिस ट्रैक एंड ये गाना ऐसा है जिसको मैं गुनगुनाते नहीं थकता। लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, ये गाना आपको कैसा लगा।
0: द माइक ड्रॉप विद एंकर, द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। Listen live and listen back to your favorite shows.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: What a beautiful track from the movie Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari. Perfect. I think perfect is such something which can be delusional. I believe perfection jaisa kuch nahi hota. It's about accepting the other person way he or she is. If that person is good. Wrong things, better to avoid, because that will affect your energy, your work, your life, your peace, your mental space, your physical health, every single thing. So mujhe aisa लगता है परफेक्शन अगर किसी चीज में चाहिए ना, तो परफेक्शन एक चीज में लेकर आओ, जो कि खुद का ध्यान रखने के लिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, ये सारी चीजों से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। देखो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता हूं, बट मीनिंगफुल बातें करता हूं। बाकी फील फ्री टू मैसेज मी, क्योंकि मैं यहां हूं। यस, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं से याद आया। देयर इज दिस सॉन्ग व्हिच केम इन 2004, वी ज़ारा की ये मूवी, उदित नारायण की आवाज। मैं यहां हूं, आप मैसेज तो करो, मैं यहां हूं।
0: The Mic Drop with Anchor.

0: Laika Radio Network. Now the home of Laika Radio Greater Manchester. Anchor with Mike Drop on Laika Radio. Laika Radio.
1: हेलो हेलो हेलो बैक टू बैक ये अमेजिंग गाने एक दिन जो मूवी है उससे कोनिचीवा एंड आई थिंक सच अ वाइब द सॉन्ग इज नेहा करोड़े ऋषि सिंह एंड अरिजीत सिंह की आवाज एंड द सेकंड वन वाज बिरादर यम्मा यम्मा ये आई हैड टू प्ले दिस सॉन्ग बिकॉज आई सॉ दिस मूवी लास्ट नाइट 21 यू नो इट वाज अबाउट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द वे वो जो मोहब्बत इंडिया और पाकिस्तान की दिखाई है बाय गॉड It is so beautifully done. I think thoda sa direction weak tha. Otherwise, the way and Dharmender ki last movie, Dharam Paji ki, and he visit Pakistan and wahan par unka welcome kiya jata hai. And jis tarike se unko wo actually unki schooling Pakistan mein hui hoti hai partition se pehle. And what a beautiful story. If you haven't watched this film, you should be watching this movie. Thoda sa better ho jati to char. चांद लग जाती मूवी पे डायरेक्शन अदरवाइज द स्टोरी लाइन इज सो गुड सो या बाकी देखो अच्छे अच्छे गाने आते रहेंगे आप बस सुनते रहो अरे सुनिए तो सुनिए सुनाई दे रहा आपको क्यों कह रहा हूं मैं सुनिए तो एनी गेसेस अरे गेस आप बाद में करना पहले एक गाना सुनो सुनिए तो अरे क्यों है कफा अरे कहिए तो

0: ये गाना ऐसा लग रहा था कि आप मेरे लिए डेडिकेट कर रहे हो या मेरे लिए गा रहे हो। थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम। नादानियां तो होनी चाहिए, बदमाशियां भी होनी चाहिए, है ना। सो या दैट दिस इज मी एंड दिस इज अंकुर। नाम तो सुना ही होगा अब तक। तो नाम क्या, अब तो आई थिंक मैं आपके जान बन चुका हूँ। मेरी नाम मेरी पहचान है भले ही, बट मैं आपकी जान हूँ, यही मेरी पहचान है आज के लिए। एंड ऐसे ही बेहतरीन वाले गाने पल पल में लेकर आता रहूंगा आपके लिए। पल पल से मुझे ना एक चीज याद आती है, किशोर कुमार का वो गाना, पल पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो क्यों ना नेकी और पूछ पूछ ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर ही देता हूँ। एंड जैसे कि वादा किया है, दिलजीत दोसांझ एवरी आवर आएंगे हमारे शो पर, उनका एक गाना डेडिकेटेड होगा आप सभी के नाम। सो या Stay tuned, keep listening. मज़ा आएगा, मज़ा आएगा. Till then, I am here. आप कब तक हो?
1: With mic drop on Leica Radio. ये है Leica Radio. Leica Radio. Currency updates are sponsored by Lemfi Mobile App. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 is equal to $1.36, $128.74 Indian rupees, $379.91 Pakistani rupees, $166.92 Bangladeshi taka, $437.98 Lankan rupees, $87.20 Afghani.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply. This is Leica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. A Leica Radio classic. Plays now.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: What songs and what character and what personalities in this beautiful movie Hello Brother, which came in 1999. Hello Brother, Brother, Hello Brother. ये अगर गाना नहीं सुना है या ये मूवी नहीं देखी है, you should be watching it. Make sure to do that. इसमें निंजा चाचा से लेकर सलमान खान की पुंगी बजाने वाला काम, रानी मुखर्जी का अंदाज, अरबाज खान द मैचो मैन के अंदाज में, लाइक अगर दबंग में आपने सलमान खान और अरबाज खान को देखा है, जस्ट ऑपोजिट पर्सनालिटीज कर दो एंड ये मूवी बना दो वैसा है. आई कंप्लीटली लव दिस मूवी एंड दिस सॉन्ग स्पेशली बिकॉज दिस सॉन्ग व्हेन आई वाज अ किड, आई थिंक आई वाज 8-9 इयर्स ओल्ड एंड me and my sister, we danced on this song for a good amount of 5 years. Koi bhi stage performance hota tha, we choreographed this song and then like seatiyan bajti thi, maza aata tha. तो वैसे ही सीटियां बजनी चाहिए. और क्योंकि गाने में ऐसे बेहतरीन वाले लेकर आ रहा हूं, टाइम फॉर पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर एंड आई पर्सनली लव दिस ट्रैक. अगर आपको भी पसंद आए मैसेज करके जरूर बताना, बच्चे की जान ना लो, मैसेज कर दो.
0: द माइक ड्रॉप विद एंकर, द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज़.

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: So £1 in British sterling today could get you up to 128.25 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online, or just download the app, which is Yono SBI UK mobile app.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah. Like our radio.
3: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
3: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th 9th 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 01612022455 साई फैशंस इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल
6: यू मीन सफल ट्रेवल
5: यस देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर
6: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए
7: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 01612501250 दैट्स 01612501250
8: Need urgent fund? Want to sell your house in cash? Having a financial difficulties buying a house? UK International Group of Companies can help you buy or sell your house in cash. We arrange bridging loans on easy interest rates. With over 35 years of experience, UKIGC offer a complete solution for property and finance. Call Riaz Ahmed on 07885 401694. That's 07885 401694.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: News headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: Dhurandhar gives you different vibe and these kind of songs are thirakne par majboor nahi, aapko karwai hi dete hai, I would say. And I am sure you are enjoying. Thank you for all the love. Asya Noreen Wajat. And ye kaun hai? Number hai jinke naam ke aage sirf dil hai. Naam kya hai? नाम क्या है बाकी सतवीर यस दिलजीत का गाना मैं एवरी आवर प्ले कर रहा हूं बट आपने मिस किया बट आई विल मेक श्योर कि आपके चेहरे की मुस्कान के लिए इफ यू गिव मी अ बिग स्माइल आई एम गोना बी प्लेइंग वन मोर ट्रैक ऑफ दिलजीत दोसांझ ये लो चलो नेक्स्ट वाला गाना आपके नाम
0: द माइक ड्रॉप विद एंकर दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर फॉर्मली नोन एज एशियन साउंड रेडियो
1: Let's step into the next hour with this Sing is Blink vibe.

0: Wow.
1: Anchor with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
2: I feel like wow, and if I am feeling like wow, I will pass on that energy to you, because you are wow, I am wow, Sama is wow, Gana is wow. What a beautiful track. I personally love this track, and I am grooving on this song, and to be honest, I am stuck with this song. Main loop par sun raha hu. Hai Jawani to इश्क होना है, ये मूवी का नाम है और ये आने वाली है कुछ ही वक्त में. हार्दिक संधू ने ये गाना गाया है एंड वरुण धवन, व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या डांस करा है. एंड इससे पहले इश्क मंजूर, अगेन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वरुण धवन, जानवी कपूर. By God, crazy, crazy गाने, crazy, crazy बातें और ढेर सारी बॉलीवुड की ऐसे गपशप. देखो, ऐसे नई नई मूवीज आने वाली है. आज मदर्स डे है और माधुरी दीक्षित, माँ, माधुरी के नाम में ही माँ का शब्द है. एंड वो एक मूवी या सीरीज लेकर आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे सून, विच इज गोना बी कास्टिंग विद तृप्ति डिमरी. शी इज अ न्यू सेंसेशनल एक्ट्रेस एंड माधुरी दीक्षित, कैन यू बिलीव शी इज प्लेइंग तृप्ति डिमरीज मॉम्स रोल. आई डोंट नो व्हाट्स द स्टोरी लाइन, बट इट सीम्स टू बी फन, नाइस, मे बी थ्रिलर भी हो सकता है, यू नेवर नो नेटफ्लिक्स पे क्या आ जाए. सो या, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच. एंड एट द सेम टाइम दिलजीत दोसांझ की बात उठी थी ना कि एवरी आवर एक गाना. एलो जी, देर क्यों किया जाए. एलो एलो.
1: The Mic Drop with Anchor. Feel good vibes throughout spring.
3: Leica Radio. Mixing in the

0: लाइटर रेडियो
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
3: यू मीन सफल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
3: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
4: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250.
5: Need urgent fund? Want to sell your house in cash? Having a financial difficulties buying a house? UK International Group of Companies can help you buy or sell your house in cash. We arrange bridging loans on easy interest rates. With over 35 years of experience, UKIGC offer a complete solution for property and finance. Call Riaz Ahmed on 07885 401 694. That's 07885 401 694.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering

0: it's the Carl Carl Anchor with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: This Carl Dhamal song was from the movie Carl, which came in 2005. If you haven't seen this movie, Shah Rukh Khan production house, jo ki Red Chili's production house, Ajay Devgan, John Abraham, and Lara Dutta, you should be watching this movie. Zayed Khan, mind-blowing to be honest, And trust me, ये जो सिंगर है कुणाल गांजावाला, we should file a petition कि कुणाल गांजावाला को और गाना गाना चाहिए, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से आप उनके कोई भी गाना सुन लो. मैं I think I will be playing one more track of him, not today, but मैं आने के बाद करूँगा. आने के बाद, as in ये आप लोगों को फिर से अपडेट कर देता हूँ, I'll be on leave for a month and I'm gonna be missing you all. Thank you for all the love. आपके जितने messages आ रहे हैं, इतना प्यार, इतनी kindness, इतनी sweetness आप दिखा रहे हो. That is so sweet. So I'll be traveling to India. And कहते हैं ना कि आप चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, या यूके से हो, या फिर यूएस से हो, doesn't matter. It's about the roots. आप अपने roots से जुड़े रहो. तो कुछ गाने आपके roots की याद दिलाते हैं, है ना? तो एक काम करूंगा, लास्ट ट्रैक आई एम गोना बी प्लेइंग समथिंग व्हिच मेक्स मी फील ट्रैवलिंग टू माय होम टाउन एंड हाउ स्पेशल इट इज फॉर मी. सो अभी के लिए काम करते हैं, आप लोग जितना प्यार दिखा रहे हो ना, आपके लिए एक गाना मैं बता दूं, गाना डेडिकेट कर दूं कि मुझे ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए. क्या चाहिए ये मांगता है दिल, क्या मांगता है ये आपको अभी पता चलेगा.
0: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So £1 in British, so £1 is equal to $1.36, 128.74 Indian rupees, 379.91 Pakistani rupees, 166.92 Bangladeshi taka, 437.98 Lankan rupees, 87.20 Afghani.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.
2: Leica Radio.
0: A Leica Radio classic. Plays now. Now.
1: The song is such a vibe. Manna De, Shailendra Singh, Ki Awaaz, and lyrics amazing. From the movie Bobby, 1973, Dimple Kapadia and Rishi Kapoor. What an amazing, amazing track. I hope you love it. And if you love it, feel free to just drop me a message on 07703 407020.

होगा वीकेंड और भी सुहाना जब आप ऋतु के साथ सुनेंगे क्लासिक्स इन द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: So £1 in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch online or just download the app, which is Yono SBI UK mobile app.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a radio.
0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Mum, I'm outside.
5: Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीज तक अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th 9th 10th में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 0161 2022 455 साई फैशंस इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें
9: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल
10: यू मीन सफल ट्रेवल
9: यस देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर
10: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल
9: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
10: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए
11: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250 दैट्स 0161 250 1250
0: News headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester.
1: As I said, I'll be traveling. Yeah, this is Ankur, and I'll be traveling for a month. तो बस इतना कहना चाहता हूँ आई लव यू एंड आई मिस यू मेरे ख्वाबों में मेरे सांसों में मेरे समा में सारी चीज़ों में आप बसे हुए रहने वाले हो आई एम गोना बी रिमेम्बरिंग ऑल माई लवली लिसनर्स एंड माई स्टूडियो माई माइक एंड आई बी सीइंग यू गाइज रियली सून सो इसीलिए ये वाला गाना आप सबके नाम प्ले कर रहा हूँ मैं डेडिकेट कर रहा हूँ लेट मी नो कैसा लगा डेडिकेशन

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: I love you, I love you, I love you. Shankar Mahadevan ki awaaz from the movie Azaar. 1997 mein ye movie aayi thi. Salman Khan ka ye gaana. Oh my God, all the Salman fans and ye gaana, I think it makes you feel something nice. So aap sab ke liye dedicated tha. As I been telling you that this is my last show for now and I'll be coming back soon. I'll be traveling for a month. Chahe India se ho, Pakistan se ho, Bangladesh se, Sri Lanka se, Afghanistan se ya कहीं से भी, चाहे यूके से, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, डजंट मैटर. आपके रूट्स आपको एक अलग वाइब देते हैं. जहां पर आप पले बड़े हो, इनिशियल ईयर्स आपके जो 15-20 ईयर्स होते हैं, आई थिंक वो कनेक्ट आपका कुछ अलग ही फील देता है. सो जाते जाते ये गाना फ्रॉम द मूवी परदेश, दैट आई लव माय इंडिया, एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, हरिहरन, एंड यू टेक केयर. डोंट मिस मी मच. आई विल बी सीइंग यू गाइस सुपर सून. दिस इज अंकुर. और अलविदा नहीं कहूंगा, क्योंकि अलविदा कहने से फिर मिलने की उम्मीद थम जाती है. हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. अस्ता ला विस्ता गाइस, सी यू.
0: द माइक ड्रॉप विद अंकुर. दिस इज लाइका रेडियो, ग्रेटर मैनचेस्टर, होम ऑफ लंदन्स लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड.

0: This is Leica Radio.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: इसी मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर। खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक, अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 01612022455। साई फैशंस, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in

0: ये है लाइका रेडियो, द वेट इज नाउ ओवर, द किंग ऑफ मेलोडी कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट।
1: तुझे देखा तो ये जान।
0: वन नाइट ओनली, बैंक हॉलिडे मंडे द 25th ऑफ मे एट द आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल
2: विद फुल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बाय आरजी एकेडमी ऑफ म्यूजिक,
0: प्रेजेंटेड बाय पेपेस एंड पावर्ड बाय बेरिको फूड डिस्ट्रीब्यूशन
2: विद टीवी पार्टनर जी टीवी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर स्प्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप एंड रागासन।
0: टिकट्स अवेलेबल नाउ एट वेन्यू बॉक्स ऑफिस और टिकट मास्टर। ब्रॉट टू यू बाय रॉक ऑन म्यूजिक, यूके इवेंट्स लाइव, ट्यूटर्स वैली एजुकेशन, एम्प्रियो इवेंट्स एंड PRC Direct, exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Need urgent fund? Want to sell your house in cash? Having a financial difficulties buying a house? UK International Group of Companies can help you buy or sell your house in cash. We arrange bridging loans on easy interest rates. With over 35 years of experience, UKIGC offer a complete solution for property and finance. Call Riaz Ahmed on 07885 401 694. That's 07885 401 694.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: इसे मिस न करें साई फैशंस की ज्वेलरी सेल एक्स्ट्राविगेंजा, अप टू 50% ऑफ तमाम एक्सेसरीज पर, खूबसूरत ज्वेलरी से लेकर स्टाइलिश शूज, प्यारे बैग्स और ट्रेंडी कुर्तीस तक, अपना फेस्टिव लुक कंप्लीट करें स्टनिंग पीसेस के साथ। पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग का बेस्ट मौका हैपनिंग 8th, 9th, 10th में, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विजिट करें साई फैशंस चितम हिल या कॉल करें 01612022455. साई फैशंस, इसी स्टाइल के साथ सेलिब्रेट करें।
7: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
8: ZTV HD par dekhiye ek nayi kahani.
9: Hamare pati humko chhod diye.
8: Ganga, jisne apne pati ka saath kho diya.
9: Dil to toot pe kya.
8: Magar apni betiyon ke liye kabhi himmat nahi hari.
10: Ek patni apni zindagi se haar maan सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
8: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
11: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HeartyHanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HeartyHanks.com now.

0: advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: You mean Subtle Travel?
2: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50% amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
9: जगदात्री,
8: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
9: माला ले आना, लाया जी.
8: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
10: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन.
8: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
11: Punjab, the biggest tunes.

0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Emprio Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सफ्टोल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टोल ट्रेवल.
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: कॉल सफ्टोल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
5: दिस इज द लाइका रेडियो Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk.